मात पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहेब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। ए नमाने

0: दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट एज ने उजी का हिता पांडे कत ना है तुट ना मल लगे ना है जल ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चला पा चौंकुट मुलाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे ओ मा ओ चढ़ पाया तक गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख का।

पहला गौ ब्राह्मण को कला वो गोबर करन ना जाय तो टिटका ता जब माली तान मले शाखा अंतर पूजा।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट

0: पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सरवण करते हैं भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना। सवेर की इस पावन घड़ी विच आओ कुछ पल अपने मन नू दुनियावी चिंतावां तो परे करके उस परम शक्ति नाल जोड़िए जिस दी कृपा तो बिना जीवन का कोई भी पल संपूर्ण नहीं होंदा। जदों मन विच भरोसा होवे बुलना ते नाम होवे दिल विच शुकराना होवे तां औखे राह भी सौखे लगदे ने। सो आओ अज दी सवेर दे विच शुरुआत करदे आं प्रभु दे नाम दे नाल प्यार अते भगती दे सुरां दे नाल इस प्रोग्राम दी जिसका नाम है जी आराधना।

0: रुलिया राम जी, जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी, बच्चे की हाल चाल है? हाल
0: चाल वाह वाह भली, कृपा उस परमात्मा दी।
1: बिल्कुल बनी रहनी चाहिए है, हर इंसान ते बनी रहनी चाहिए है। देखो रंगा सिंह जी, जिदा कहने कि समा जड़ा है, समय के लिहाज न जो आप खेतीबाड़ी के बदलाव ले आने
0: जी,
1: तो फिर साढ़े तो बोझ घट जाता है, वजन घट जाता है। जे असी उ रवायती फसली चक्रा के फसे रहेंगे, फिर कितने ना कि जाके खेती जोड़ा कोई लाहेमंद धंधा आपू कह नहीं सकते।
0: हाँ बिल्कुल जी, तुम जी बदलाव की गल की ना, कुदरत भी जो नियम है या फिर कह लो कि समय के मुताबक जिदा आप सोच न बदली दा ना, इस तरह रवायती फसलों के चक्कर बाहर निकल के ना तो फसलों भी बदलाव लियाना चाहिए।
1: हूँ तो रंगा सिंह जी, खेतीबाड़ी एक ऐसा धंधा हो गया जो इस असी कहने कि खेती एक व्यापार बन चुकी है
0: जी,
1: तो जो आप व्यापारक नजरिए खेती की ब्यौतबंदी सिरजते हैं तो उस लिहाज न फिर सानू यह नहीं है भी एक फसली चक्कर की जो असं गल करिए भी उही रवायती फसली चक्कर असं फसे रहीए। हुण फसली भिन्नता लिजाण की लोड़ है,
0: बिल्कुल
1: हुण सानू अपनी रसोई च देखण की लोड़ है, गुआंढियां की रसोई च देखण की लोड़। दा मतलब यह है भी जो साडी रसोई दीआं लोड़ां है, जो साडे रोज़मर्रा दीआं लोड़ां है, उन्हां चक्करां वल जे असीं जावांगे ता उहदे च सानू मंडीकरण की समस्या रंगा सिंह जी बहुत हद तक जिहड़ी है वह खत्म हो जाती है। किसान आके जिहड़ा है हमेशा फसल मंडी ते मरदी है, बहुत सारिया फसल साडीआं ऐसीआं है पैदा तो असं उन्होंने कर लें पर उन्होंने मंडीकारी नहीं होंगी, फिर इस करके कि ना कि जाके फिर वह बंदे का मन खट्टा हो जाता है। सो कई फसल ऐसा रंगा सिंह जी जिन्होंने अस बीजते
0: जी,
1: जो साड़िया रवायती फसल से वो कोई नवी फसल नहीं है, उन्होंने फसलों ही असी जो है सुरजीत करने की लड़ है। चण कणक झोना झोना कणक ये जो फसली चक्कर है ये आप थोड़ा जि तो वजन घटाइए, तेल बीज है।
0: हाँ बिल्कुल जी,
1: हुण तेल दी रंगा सिंह जी इन्नी ज़्यादा दरामद जिहड़ी है, देश दा किन्ना सरमाया जिहड़ा है बाहरले मुल्कां नूं चलिया जांदा है, क्योंकि साडे कोल तेल दी जिन्नी पैदावार सानूं लोड़ है उस लिहाज नाल असीं करदे नहीं कोई टाइम ऐसा हुंदा सी भी घर दा तां तेल हुंदे हुंदा सी, असीं तेल दी मंडीकारी भी करदे सी, बेचदे भी सी, ते गुआंढी आंढी गुआंढी नूं लोड़ हुंदी सी, उहदी लोड़ वी पूरी हो जांदी सी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही गल।
1: सो इस करके तेल बीजां दा अज दी खेतीबाड़ी दे विच बहुत महत्व है। एक तां रंगा सिंह जी देखो ये गल आ जाती है कि साडे कोले बुनियादी स्रोत है साडी जमीन, पैली
0: बिल्कुल,
1: तो जे पैली नूं आपां इसे तरह वरतदे रहांगे, इसे तरह धक्के नाल कुटदे रहांगे, तो पैली ने भी एक दिन जवाब पानी तां सानूं जवाब देण दे पहुंचिआ पिआ
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस तरह जिहड़ा है जमीन ने भी सानूं हुण तत्तां दा तुसीं दर्जा देखो, इन्ना ज़्यादा जमीन की सेहत खराब है। अज साडी सारी जमीन जे पूरे इलाके की गल करिए आपां जिन्ने इलाके भी है साडे पंजाब दे
0: जी,
1: सारिआं दे विच जमीन की सेहत जिहड़ी कोई बहुत ही वधिया जां बहुत ही चंगी नहीं कही जा सकती। सो इस करके इहदा इह है कि

नरक के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

पेश करता रहेंगे पूनम। रात 9:15 सुनोगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 रंगमंच ते फिल्मा ते कलाकारां नाल मुलाकात करवाई जाएगी। प्रोग्राम रूबरू आज दे इस प्रोग्राम दे विच मिलवावांगे जतिंदर कौर दे नाल, मुलाकाती होणगे सुखजीत कौर। शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुरसादना सुन सकोगे रात 10:02 ते। आज दे इस प्रोग्राम दे विच राग बगेश्वरी दे विच क्लारनेट वादन सुनोगे, कलाकार होणगे जोगिंदर तखी। ते रात 10:30 सुनोगे तुहाडी फरमाइश। इस तो इलावा खबरां ते मुख खबरां अपने निर्धारित समय ते पेश कीतियां।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्विस् राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन् इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावज्जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणुऊर्जाक्षेत्रे च परस्परसम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44,200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पञ्च विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामि शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संचेतना प्रकटिता। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामि दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: दोस्तों ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा सब का स्वागत करते हैं साढ़े इस प्रोग्राम सोहनी सवेर दे विच। वैसे गल की जाए तो असी सारे इक्वल हाँ, यानी कि इक्वालिटी की गल जी है वह की जाती है। और ये हफ्ता जोड़ा वै 2 to 8 अक्टूबर का ये एंटी अनटच एबिलिटी के नाम जाने जाता है, यानी कि छुआछात विरोधी हफ्ता मनाया जाता है। कभी वैसे सोचा कि इंसान की पछाण जी है उसकी जात तो होंगी है ज उसकी इंसानियत तो। जो दिल विच प्यार है, अखां दे विच सत्कार है ते दुनिया लई सन्मान है तो फिर किसी नूं उच्चा जां नीवां कहण दी लोड़ कित्थे रह जांदी है। वैसे 2 to 8 अक्टूबर तक जिहड़ा मनाया जाण वाला छुआछात विरोधी हफ्ता सानूं इसे सोच वाल जिहड़ा उह लैके जांदा है, एक अजिहे समाज वाल जिथे हर इंसान नूं बराबर दा सत्कार, बराबर दे मौके ते बराबर दी इज्जत जिहड़ी है वह मिलती है। भारत दे संविधान की गल की जाए तो धारा 17 छुआछात नूं खत्म करती है ते इस दे किसी भी रूप दे विच अमल नूं मनाही करती है। ये सिर्फ कानून की एक धारा नहीं, सगों उस भारत का सुपना है जिथे किसी मनुख दे नाल उसके जन्म जा जात के आधार पर भेदभाव ना हो। पर सच्ची तब्दीली जिहड़ी है वह उदों आउंदी है जदों कानून के नाल नाल साडी सोच भी बदलती है, क्योंकि भेदभाव कई बार बहुत खामोश हुंदा है, किसी नूं अपने कोल बैठन तो रोक दिंदा है, किसी नाल खाण पीण विच वखरा विहार करदा है, किसी दी योग्यता तो पहला उसकी जात नूं वेखदा है। ये सारियां गल्लां साडे समाज सामने सवाल खड़े करदियां ने। इसलिए इस हफ्ते का संदेश बहुत साफ है, इंसान नूं इंसान समझिया जावे, किसी की इज्जत उसके जन्म नाल नहीं उसकी इंसानियत नाल हुंदी है। सानूं अपने घरां तों, अपने बच्चियां तों, अपने आले दुआले तों यही सोच जिहड़ी है वह बदलनी पवेगी। बच्चों नूं सिखाउणा पवेगा कि दोस्ती विच किसी भी तरह की ऊंच नीच जिहड़ी है वह नहीं होंदी, सत्कार विच भेदभाव नहीं होंदा ते इंसानियत की कोई जात नहीं होंदी। ते अज जदों असी तरक्की दियां गल्लां करदे हां, चंद तक पहुंचण दे सुपने वेखदे हां, तो साडे समाज दे विचों भेदभाव दियां पुरानियां दीवारां भी ढहणियां चाहीदियां ने। सो इस विरोधी हफ्ते दे विच सिर्फ एक सौं चुकी है कि सगों अपने रोज़ाना दे व्यवहार विच बराबरी नूं जिहड़ा ना वह असी जरूर जगह देईए, किसी नूं उसकी जात करके या उसके नीवेंपन करके कदे दूर ना करिए, किसी की इज्जत नूं ठेस ना पहुँचाइए, जिथे भी भेदभाव नज़र आए उतों चुप चाप उठ जाइए, तो हमेशा बराबरता की गल करिए, एक दूजे नाल प्यार नाल रहन की गल करिए, क्योंकि जदों साडे संविधान ने सानू ये सिखा दिता तो फिर असी कौन होंने कि किसी तो भेदभाव करिए। हमेशा बराबरता की गल करना साडा पहला फर्ज बनना चाहिए।

दोस्तों गल कर रहे हैं आज असी एक महान विज्ञानी दी, मेघनाद साहा, विज्ञान नूं नवी दिशा ते नवी दशा देने वाले महान विज्ञानी। अज असी याद कर रहे हैं भारत के महान विज्ञानी मेघनाद साहा नूं, जिन्हों का जन्म 6 अक्टूबर 1893 नूं अज के दिन ढाका नेड़े होया सी। बहुत ही सधारण परिवार विच जन्मे मेघनाद साहा ने अपनी मेहनत, लगन ते ज्ञान दी ताकत नाल विज्ञान दे खेतर दे विच विश्व पद्धर ते अपनी एक वक्री पछाण बनाई सी। उन्हां दा सब तो महत्वपूर्ण योगदान साहा लोनिजाइजेशन इक्वेशन है, जिसने विज्ञान नूं इह समझण दे विच मदद कीती कि तारियां दे वर्तमान दे विच तापमान अते दबाव दे कारण परमाणु किवें आयनाइज होंदे ने। सौखे शब्दों के कहीए तो साहा की खोज ने सानू तारियां की रोशनी नूं समझण ते उनां दे तापमान ते रसायनिक बनन बारे जानकारी हासिल करन लई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञानिक आधार दिता। पर मेघनाद साहा की शख्सियत सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं सी। वह चाहते सी कि विज्ञान आम लोगों की जिंदगी नूं बेहतर बनाने का साधन बने। उन्होंने देश विच विज्ञानिक सोच, सिक्ख्या ते तकनीकी विकास नूं उत्साहित करने लई भी काम किया। उन्होंने जीवन सानू यह सिखाता है कि हालात भावें किन्ने भी मुश्किल होन, जे मन दे विच सीखण दी लगन ते कुछ नवा करन दा जज्बा होवे तां इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच सकता। मेघनाद साहा दी कहानी सिर्फ एक विज्ञानिक दी कहानी नहीं है, ये मेहनत, ज्ञान दे, विज्ञानिक सोच दी ताकत दी कहानी है। अज उन्हां दी जन्म वरीगंढ ते उन्हां नूं नमन श्रद्धांजलि दिंदे आं। आओ असीं भी अपने अंदर सवाल पुछण, सीखण ते

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली

0: अपने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियथ क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
2: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
3: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
4: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजिंजम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट।

0: एंड अलाइड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: देश दी एरोस्पेस रक्षा निर्माण समर्था मजबूत करन हथियारबंद फौजा की संचालन तैयारी विच इसके योगदान नूं भी उजागर करेगा। रक्षा मंत्री अज विशाखापट्टनम विच हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट सपोर्ट शिप एक लॉन्च करनगे अते फ्लीट सपोर्ट शिप पंज दा नींह रखनगे। ओ एडवांस स्लिप वे 4 और 300 टन वाली गोलियत क्रेन का उद्घाटन भी करनगे। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा xhandle@aiiraarinjalandhar। भारत ने अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता एकता ते खेतरी अंगठता अखंडता लई अपनी हमायत अते अफगान लोगों की भलाई प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत ने एक गल मॉस्को विच रूस वल्लों कराए गए अफगानिस्तान ते 8वें मॉस्को फॉर्मेट सलाह मशवरे विच कही। भारतीय वफद की अगवाई रूस विच भारतीय राजदूत विनय कुमार अते जॉइंट सकत्तर डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने की थी। मीटिंग विच रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान अते उज़्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी विदेश मंत्री अमीर खान मुतकी ने की थी। बेलारूस अते मिस्र मेहमान वजो शामिल हुए। रूसी विदेश मंत्रालय मुताबिक हिस्सा लैण वालिया ने समानता ते आपसी लाभ के आधार से काबुल नाल सहयोग वधाउण अते विश्व आर्थिकता विच अफगानिस्तान दे एकीकरण की हमायत करन की जरूरत नूं दोहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगे लोवरोव ने कहा कि यह फोरम उन्हां देशां नूं इकट्ठा करता है जो अफगानिस्तान नाल बराबर अते आपसी तौर ते लाभदायक भाईवाली की इच्छा रखते ने। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना 2017 विच अफगानिस्तान विच राष्ट्रीय सुलह अते शांति नूं उत्साहित करन लई कीती गई सी। पंजाब ते हरियाणा विच झोने दी पराली साड़न दी घटनावां नूं रोकण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर NCR अते नाल लगदे इलाकियां विच हवा दी गुणवत्ता दे प्रबंध बारे कमिशन CAQM ने इन्हां राज्यां दे 34 जिलियां विच फ्लाइंग स्क्वैड तैनात कीते ने, जदों कि तालमेल वालियां खेतर पद्धरी निगरानी विधियां नूं होर तेज़ कीता है। चुगिरदा जंगलात अते जलवायु तब्दीली बारे मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 1 तरीक तो अगले महीने की 30 तरीक तक पंजाब के 18 जिलों अते हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वैड तैनात किए गए हैं। इस विच अगे कहा गया कि फ्लाइंग स्क्वैड अपने अपने निर्धारित जिलों में जमीनी पदरी स्थिति का मुलंकण करेंगे अते संबंधित अधिकारियों नाल नेड़े तालमेल करेंगे। टीमां किसानां, पराली सुरक्षा बल, जिला पदरी अधिकारियां, राज सरकार दे नोडल अधिकारियां, संबंधित राज प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां दे अधिकारियां SAS नगर विखे CAQM सैल अते कमिशन नाल तालमेल करनगियां। झोने दी पराली साड़न दीआं होर घटनावां नूं रोकण लई चुके गए कदमां दे नाल नाल समेनी स्थिति दी रिपोर्ट रोजाना CAQM सैल नूं दित्ती जाएगी। मंत्रालय ने इस गल ते जोर दित्ता है कि मजबूत फील्ड पदरी विधि दा उद्देश वाढी दी रुत दौरान पराली साड़न दीआं घटनावां नाल निपटण लई जमीनी स्थिति दा समय सिर मुलंकण, लागू करन वालियां एजेंसियां विचकार नजदीकी तालमेल अते तुरंत रोकथाम कार्रवाई नूं यकीनी बनाउणा है। भारतीय खुराक सुरक्षा ते म्यार अथॉरिटी ने राजां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउण वाले त्यौहारां दौरान मिलावटी अते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिमां शुरू करन दी अपील कीती है। FSSAI ने सारे राजां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे कमिश्नरां अते इस दे खेतरी डायरैक्टरां नूं पत्र लिख के त्यौहारां दौरान भोजन सुरक्षा, गुणवत्ता अते मिलावट नूं रोकण लई विशेष मुहिमां शुरू करन लई कहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अते हिमाचल प्रदेश विच बिजली लिशकण अते तेज हवावां चलण दी पेशीनगोई कीती है। खेडां विच मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते वैसट इंडीज़ विचकार 5 T20 मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज लखनऊ विच खेडिया जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। तमिलनाडु, पुदुचेरी अते पश्चिम बंगाल विच विधानसभा दीआं 5 सीटां अते असाम विच 1 लोकसभा सीट लई जिमनी चोणां वास्ते अज वोटां पै रहीआं ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तों हिमाचल प्रदेश दे 3 दिनां दौरे ते होणगे। भारत ने अफगानिस्तान दी प्रभुसत्ता एकता ते खेतरी अखंडता लई अपनी हमायत दोहराई। हवा दी गुणवत्ता दे प्रबंध बारे कमिशन ने पंजाब ते हरियाणा दे 34 जिलों विच झोने दी पराली साड़न दीआं घटनावां नूं रोकण लई फ्लाइंग स्क्वैड तैनात कीते ते मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ते वैसट इंडीज़ विचकार 5 T20 मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज लखनऊ विच खेडिया जाएगा। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

के 40 मिनट हो चुके ने। आ सुनते हैं पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते आधारित प्रोग्राम महक पंजाब दी। आज दे इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला सुनते हैं आरिफ लोहार दी आवाज़ दे विच गाया होया ए गीत।

सुनी दी दी आवाज़ जड़ी है वो किन्नी कु ज़्यादा सुरीली ते किन्नी ज़्यादा वड्डी है। वो सिर्फ एक किस्म दे गीतां दी गायिका नहीं है, एनर्जेटिक नंबर्स हों या फिर मेलोडीज़ होवे उसकी आवाज़ हर मूड नू अपना बना लैंदी है। किंज किस तरीके दे नाल बई इहदे वास्ते तां हुण तुहानूं इह गीत सुनना पैणा, तुहानूं तां ही पता लगेगा कि किस तरीके दे नाल। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੂਮ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: ते लो जी दोस्तों, साढ़े एक होर दोस्त इस प्रोग्राम दे विच पहुंच चुके ने जी, स्वागत है जी बहुत बहुत। हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
3: ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਥ ਬੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ।
2: ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ?
3: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਿਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ।
2: ਤੇ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ?
3: ਮੌਸਮ ਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
2: ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?
3: ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਚ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ।
2: ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ?
3: ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਸਾ ਭੋਸਲੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹਰੇ।
2: ਲਓ ਜੀ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय

0: ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डीआईवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम शुरू हो चुकिया है जी। तमक जलंधर पैंदी ते मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ तुहाड़ी फरमाइशां दी लड़ी। सानू बहुत सारे स्रोतियां ने कई वट्सएप मैसेज किए ने ते दस्या कि वह केड़ा गीत सुनना चाहते ने। तुसी भी सानू साडे वट्सएप नंबर ते मैसेज कर सकते हो। नंबर नोट कर लो 9465536077। आओ फिर वेखदे हां कि इस नंबर ते सानू पहला मैसेज किदा आया। मैसेज आया जी जिला पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड तो शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवांश संगीता लिपि ते दिवाली दीपाली गोप दा। ते अगले साथी ने पिंड शाहपुर मैतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुल जोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह। अगली फरमाइश आई है जी चार खंबा चौंक श्री तरन तारण साहिब तो दलजीत सिंह फटाफट हरजिंदर सोनिया रेनू

टिंकू, बब्बू, अमनप्रीत ते अमृतपाल दी। अगले साथी ने पंचकुला तो आशू चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भविक ढींगरा। कृष्णा पार दिल्ली तो लिखते ने सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, गुरवंश सिंह जौड़ा, वरिंदर शर्मा, कमलेश शर्मा, दीक्षा शर्मा ते रॉबिन शर्मा, नाल ही वियान शर्मा। यह लिखते ने जी धर्मकोट जिला मोगा तो। अगला मैसेज आया है पिंड अलुआना म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो। दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबरजंग सिंह चीमा, महतबीर सिंह राजपूत रायपुर दा, ते दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा ते नोखेलाल वर्मा। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर करदे हां डोली डॉली गुलेरिया दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी, ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज लैने आ जी। देखते हैं कि अगला मैसेज कित्थों आया है। मैसेज आया जी खन्ना तो जगदीश सहगल, राज सहगल, पूजा सहगल, पार्थ सहगल दा। ते नाल ही अगले साथी ने जी पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, वकील सिंह चहल, पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू, पिंड लैपो गैरी तो गुरमीत सिंह, ते पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह। अगली फरमाइश आई है श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर दी। अगले साथी ने जी सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा।

निशान शर्मा, अनुराधा शर्मा, निवान ते निया शर्मा ऊना हिमाचल तो। मखू तो लिखते ने बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मनीष बजाज। अगला मैसेज आया है ककराली, जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य एंजल, नेहा अंजलि ते शुभम ते लवली दा। हमी हैबोवाल तो लिखते ने जी दादरी गेट पिवानी तो कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा ते कुणाल मेहरा। अगले साथी ने जसपाल भारती, वीना भारती, सुरेंद्र, मनदीप, डिंपल, युवराज, हैप्पी, हरप्रीत, साउथ एवेन्यू अबोहर तो। पिंड बणवाला हनुमंता फाजिल का तो मैसेज है विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माता विद्या देवी ते पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश तो लिखते ने सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह ते राजेंद्र जी शाह। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो मैसेज है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा दा। पिंड कातरों तो लिखते ने अमरीक सिंह, औलख, जसविंदर, सुखमन प्रीत, जशन, बिंदर खेड़ी। अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाल हक डावर ते मोहम्मद उमर डावर। ए मैसेज है जी खंडवा तो, भाटा बारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने सोहन जोशी। पटेल नगर मलोट तो मैसेज है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू जाजोरिया ते गुड्डू दा। ते अगली फरमाइश है हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो, ते नाल ही गांव टानी लाल खां नौहर तो जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो ते विनोद खान दी। आओ फिर इन्ना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ हंस राज हंस दी आवाज़ विच।

पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा ते आराध्या साहू। अगले साथी ने मामुलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान तायड़े, वसंत राव भोचने, पूंजा जी नहावकर ते मोहन करांगले, संतोष भाकरे, सुनैना ते सुकन्या ते सविता भाकरे, एलिक दिने जी शहाजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो, निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया ब्रैम्पटन कैनेडा तो, बठिंडा तो लिख देने इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर। अगली फरमाइश आई है शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा दी, भागवत वर्मा दे नाल दत्तरे गीतो। सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, रौनकी खान, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी ते समीना अंसारी, ये लिख देने जी पिंड गड्डी कुटाहा जिला पंचकुला तो। अगले साथी ने अलीका तहसील डबवाली तो, रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी, मेहम गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी ते गुरमंत, रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान, ये लिख देने जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो। मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्दा, ममता रानी, अभिषेक मिद्दा ते दिव्या, ए मैसेज है पिंड चांदमारी तो। ते अगले साथी ने रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी ते हिमाक्ष, सूर्यनगरी, जोधपुर राजस्थान तो। पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो लिखते ने जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर, ते गुरमीत सिंह नीता लिखते ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। आओ फिर इन्ना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अखीला गीत सुनते हाँ जी सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच। इस दे नाल ही मैनू निधि चुगनू अज दा धमक जलंधर पैंदी इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत देना। नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष

0: खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वस्ते बड़े लैके अर्चना हाजिर।
0: अर्चना का साथ देने लई मीनू भी इन्हां दे नाल है ते सारिआं दा की हाल चाल है। अर्चना सब तो पहले तुसीं दसो ठीक ठाक हो?
1: बई हाल चाल ठीक है। ते जदों भी मीनू असीं एक दूजे नूं मिलदे आ ना, इह मैं हर प्रोग्राम दे जरिए यही कहनी आ और वाकई ही इह सच भी है। जदों असीं एक दूजे नूं मिलदे हाँ तो एक दूसरे की सुख सांद पुछदे आ, घर दे विच सारिआं दा पुछदे आ, बच्चिआं दा पुछदे आ, बजुर्गां दा पुछदे आ भी घर परिवार सब ठीक है, ते शायद यही चीज़ सानू सारी दुनिया दे विच सब तो वखरा करती है।
0: बिल्कुल, इंसानियत यही हुंदी है कि जे तुसी इंसान नू किसे नू मिलो तां जरूर पुछना चाहिए कि तुसी किवें दे हो, मैं तुम्हें तुहाडी किवें मदद कर सकदा या तुहाडी किवें कम आ सकदा। ये जिहड़े दो लफ्ज़ ने ना अपनापन महसूस करवाउंदे ने इंसान नू। सो जदों असीं अपने घर दे विच भी हुंदे आ एक दूजे दे नाल टच रहना, प्यार दे नाल रहना, सो इन्हां गल्लां दा जरूर ध्यान रखो कि एक दूजे दे बारे पुछदे रहो। वैसे मैं देखिआ है कि जिवें अर्चना बच्चे छोटे हुंदे ने ना उहनां दे नाल साडी गल्लबात बहुत घट हुंदी है
1: जी।
0: बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फोन दे विच लगे रहिंदे ने है या काम दे विच लगे रहिंदे ने या स्कूल होमवर्क दे विच लगे रहिंदे ने। कई बार असीं अपने रुझेवियां करके ना बच्चियां नूं भुल जांदे आ कि बच्चियां दे हाल चाल नूं भी पुछणा साडा बणदा है।
1: भाई बिल्कुल जी, जिहड़े बच्चे हुंदे ने उह कच्चे भांडे हुंदे ने। कच्ची मिट्टी जिहड़ी हुंदी उहनूं असीं कोई भी आकार दे सकदे आ, जदों असीं आकार देणा है ना उहदे वास्ते सानूं उहनां नूं टच करना पैंदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ

0: कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय

0: समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859 जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है साडे अज प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

9:30 प्रोग्राम रूबरू तहत अज सुनना रंगमंच दे कलाकार जतिंदर कौर नाल कीती मुलाकात। मुलाकाती ने सुखजीत कौर मुख खबरां तो बाद 10:02 ते शास्त्री संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च आज तुसी जोगिंदर तखी दा क्लारनेट वादन सुन सकोगे राग भगेश्वरी च। रात 10:30 दा समा होवेगा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। ग्यारह बजे सुनना हिंदी समाचार ते उस तो बाद अंग्रेजी समाचार 11:05 ते। एसी साडे अज प्रसारित कीते जान वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आ हुण सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तों प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब ते हरियाणा विच पराली साड़न दीआं घटनावां नूं रोकण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर NCR ते नाल लगते इलाकिआं विच हवा दी गुणवत्ता दे प्रबंध बारे कमिशन CAQM ने इन्हां सूबिआं दे 34 जिलिआं विच फ्लाइंग स्क्वैड तैनात कीते ने, जदों कि तालमेल वालिआं खेतर पद्धरी निगरानी विधिआं नूं होर तेज़ कीता है। चुगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की 1 तरीक तो अगले महीने की 30 तरीक तक पंजाब के 18 जिलों और हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वैड तैनात किए गए हैं। इसने अगे कहा है कि फ्लाइंग स्क्वैड अपने अपने निर्धारित जिलों में जमीनी पदरी स्थिति का मुलंकण करेंगे और संबंधित अधिकारियों नाल नेड़े तालमेल करेंगे। टीमां किसानां, पराली सुरक्षा बल, जिला पदरी अधिकारियां, राज सरकार के नोडल अधिकारियां, संबंधित राज प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां के अधिकारियां, SAS नगर विखे CAQM सैल और कमिश्न नाल तालमेल करनगियां। पराली साड़न दीआं होर घटनावां नूं रोकण लई चुके गए कदमां दे नाल नाल जमीनी स्थिति की रिपोर्ट रोजाना CAQM सैल नूं दित्ती जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज कहा कि सरकार अपनियां लोकपक्षी नीतियां नूं निरंतर जारी रखेगी, जिन्हां विच औरतां लई मावां दीआं सत्कार योजना, घरां लई मुफ्त बिजली, किसानां नूं दिन वेले बिजली सप्लाई अते नो कैश नो फरमाइश दी पारदर्शी प्रणाली राहीं सरकारी नौकरियां देणा शामिल है। सरदौलगढ़ हल्के विच लोक मिलनी प्रोग्राम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मावां दीआं सत्कार योजना योग लाभपात्री औरतां नूं सिद्धे उन्हां दे खात्यां विच माली सहायता देण लई तैयार कीती गई है। सूबा सरकार ने हाल ही विच 36,87,000 औरतां नूं 3 महीनों की 1,262.54 करोड़ रुपए की दूजी किश्त ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्हां दी सरकार ने औरतां, किसानां, नौजवानां अते विद्यार्थियों नूं अपने प्रशासनिक मॉडल के केंद्र विच रखिया है। पंजाब सरकार ने अज 180 ETT टीचर्स यूनियन दीआं मंगां दे हल लई सहमति प्रगटाई है। सरकार ने उन्हां दे जूनियरां नाल तनखाह दी असमानता नूं दूर करके तनखाह संबंधी चिंतावां नूं हल करन अते जायज़ मंगां दे निपटारे लई चल रही जांच विच तेजी लियाउण ते सिद्धांतक तौर ते सहमति जताई। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह यकीनी बनाउण लई कि इस हल विच कोई प्रबंधकी रुकावट ना आवे, चल रही जांच रिपोर्ट बिना किसी देरी तों हासिल करन दे निर्देश जारी कीते गए ने। सिख्या विभाग नूं हदायत की गई है कि जिवें ही जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है उसके सिट्टियां के आधार से तुरंत कार्रवाई अमल में लिया जाए। यह फैसला पंजाब सिविल सकत्रेत विखे हुई एक अहम उच्च पदरी मीटिंग दौरान लिया गया, जिसकी प्रधानगी खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने, सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख सकत्र KAP सिन्हा, विशेष सकत्र खजाना शौकत अहमद परे और सकत्र स्कूल सिक्ख्या सोनाली गिरी नाल की। सूबा सरकार के मुलाजमान ठेकादारी स्टाफ दी शिकायतों से सेवा नाल संबंधित मामलों के हल लई पंजाब के खजाना ते ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने, जो मुलाजमान के मामले

0: फौजी हीरो ए प्रोग्राम जारी रहेगा। फिलहाल तुसी सुनोगे हुण तो कुछ देर बाद पंजाबी खबरां 1:40 ते फिर उस तो बाद सुन सकोगे साडे दिल्ली केंद्र तो उर्दू च खबरां 1:50 ते। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चुनावी खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने लिए एक मजबूत ते एकीकृत इकोसिस्टम की लोड़ है। देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। मोदी पार्टी ने वोटर सूचियों की विशेष सोध SIR प्रक्रिया में बेनियमिया और मुख्य चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली के संसद मार्ग तो चोण कमिश्नर के दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से देश में अराजकता का माहौल बनाने की योजनाबद्ध कोशिश करने का इल्जाम लाया है। भारत की महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। खबरों विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने और देश की रक्षा समर्था को मजबूत करने लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की लोड़ है। श्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत की। उन्होंने फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 की नींह रखी और अपग्रेड किए स्लिपवे 4 और 300 टन समर्था वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन किया। इकाठ को संबोधन करदे श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 का नींह पत्थर HSL विखे उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत दीआं समुद्री समर्थावां नूं मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम ने। उन्होंने कहा कि सूरे नामक फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 भारतीय समुद्री फौज की संचालन प्रभावशीलता वधाएगा। उन्होंने अगे कहा कि HSL विखे नवा स्लिपवे और गोलियत क्रेन वड्डे जहाज निर्माण प्रोजैक्टां नूं पूरा करने शिपयार्ड की समर्था च वाधा करनगे। उन्होंने कहा कि समुद्री फौज ने मानवतावादी सहायता आफत राहत समुद्री डाकू विरोधियां कार्यां अते समुद्री सुरक्षा विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 दहाकियां तो वध समय तो भारत दीआं समुद्री ते रक्षा जरूरतां नूं पूरा करने विच अहम भूमिका निभाई है।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण देहाती विकास मंत्रालय एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। नवे पेंडू कार्ज ढांचे 375 मंजूर शुदा कामों का प्रबंध है। यह नवी सूची पिछले ढांचे तहत 266 कामों तो 41% वाधा दर्शाती है। कामों को 4 मुख्य थम्मां के आधार पर पुनर्गठित किया गया। इन्हें पानी सुरक्षा बुनियादी पेंडू ढांचा आजीविका ढांचा और मौसमी घटनावां ते आफतों की तैयारी लिए विशेष काम। हरेक काम ग्राम सभा द्वारा प्रवानित एक विकसित ग्राम पंचायत योजना तहत जमीनी विकेंद्रीकरण

0: ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਚ ਫੀਫਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਰਗੁਏ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਨਾਲ 1-1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਚ ਬੈਨਿਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਗੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ 7 ਚਾਰਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਾ ਟਿਨੂਬੂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 3 ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जान सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निज़ाम की जरूरत है, ताकि वो अपनी समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिपवे 4 नीज 300 टन की एक कोलायत ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तशदीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम इकदाम हैं। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रसाई, पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तख़फ़ियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिप हुए और गोलायत ट्रेन से शिपयार्ड्स की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा कि यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मधुरांतकम और तारापुरम, पुदुचेरी में तट्टान सावडी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मजमू

0: तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशवरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस हुसूलयाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निज़ाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जुग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वक़ार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क का अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तआवुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवीयत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निज़ाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज़ के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाखियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया। अलबत्त जब ये मुजाहरीन आकाशवाणी के करीब इंतखाबी कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो हिफाजती अमले ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना दिया। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहादी फोर्सेस ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दी। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने जद्दा में एक कार्रवाई करते हुए असलहा के जखायर, धमाका खेज मवाद

0: में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जान सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म सिर्फ तुम दा, जिसनू आवाज दिती है कुमार सानू ते अलका याग्निक ने।

फौजी विरोह प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है एसपी बाला सुब्रमण्यम ते के एस चित्रा दी आवाज विच। फिल्म का नाम है लव।

0: ਔਰ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਚੁਗਨੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
3: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा

0: असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा

0: और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
2: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा।

0: आकाशवाणी समाचार दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
6: ਵਈ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
3: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
6: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
3: ਐਚਆਈਵੀ
6: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਿਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
7: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੰਚਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸੁਣੋਗੇ।

प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते इस विच तुसी सुन रहे हो मदन लाल चंचल ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असीं तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हां। दोस्तो, अज 6 अक्तूबर दा दिन मरहूम प्रसिद्ध भारतीय अदाकार निर्माता ते सियासी आगू विनोद खन्ना दा जन्मदिन है। दोस्तों, इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1968 विच आई फिल्म मनका मीत राही बतौर खलनायक की। इन्हों साल 1999 च फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार ते मरण तो बाद साल 2018 च दादा साहेब फालके पुरस्कार मिलिया। इन्होंने गुरदासपुर तो संसद मैंबर वजो चोण भी जीती। इन्हां केंद्र सरकार च संस्कृति ते सैर सपाटा मंत्री अते बाद विच विदेश राज मंत्री वजो भी काम किया। 27 अप्रैल 2017 नूं मुंबई च इन्हां दा देहांत हो गया सी। दोस्तों, प्रोग्राम की पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजियां गईयां ने, ते चिट्ठियां भेजण वाले ने डबवली हरियाणा तो जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल, मीनू बकोलिया, चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक।

0: मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल ते बिट्टा बजाज। चौंक बत्तियां वाला पिंड माधोपुर जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी ते होरना दे परिवारक मैंबर। मालवा रेडियो श्रोता संघ परमीलागंज अलोट जिला रतनाम मध्य प्रदेश तो बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा ते ऋषि वर्मा। दोस्तों इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते सुणदे आ प्रोग्राम दा पहला गीत।
1: ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

हरभजन मान की आवाज़ में तुसी सुन रहे सी खूबसूरत गीत तीन रंग नहीं लभने बीबा। बिल्कुल दोस्तों, हुसन जवानी ते मापे बार बार नहीं मिलने, इन्हां तिन्हां की कदर करनी चाहिए है। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया। गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक। महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो बाबा त्रिलोक सिंह, शिवजोत सिंह गिदड़बाह, गुरसिमरन, नवप्रीत, राजदीप, रहमत, नवनीत, दोस्त बलतेज कुड़ियाना ते भोला सवाग। पिंड अमीरशाह वाला जिला फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह वरवाल ते होर बहुत सारे दोस्त मित्र। इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम का अगला गीत।

सुशीलपुरी, बीके पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा कपूरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहा, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, वीकेपुरी ते आरएसपुरी। पिंड नथाना, जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी। श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह ते सहजप्रीत कौर। टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर ते हरजिंदर। दोस्तों, इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सीगे बब्बू मान की आवाज़ विच खूबसूरत गीत मेरे दिल विच तेरा घर होवे। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजने वाले ने मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीष बजाज फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंदरजीत कौर बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांधा पिंड कुड़ियाणा तो कुलदीप धींगड़ा सुमित धींगड़ा विशाल बलतेज बूटा सिंह बटू रूड़ सिंह पेंटर बलतेज सिंह ते होर उन्हां दे परिवारक मैंबर मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल अमनदीप गिल खाने की ढाब तो शमशेर कोलतर बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू अविताज सिद्धू धौला किंगरा तो जगतार जग्गा पिंड आजमवाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक निशान सिंह बुक सीरत कौर कीरत कौर ते जसवंत कौर राज मिस्त्री पिंड मारूवाणा बोदला ढाणी नेड़े खाना अरनी वाला तो सुरेंद्र कौर बूक बलविंदर कौर बूक बलते बलदेव सिंह चक कंधे शाह पिंडी तो अमन लाल पोस्टमैन। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सी क्लेयर कंठ दी आवाज़ विच खूबसूरत गीत एक मेरा दिल। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने बागा पुराना तों सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह रखरा ते जसगुण रखरा। इसी तरह सहारनपुर तों सुरेश नारंग ते आशा नारंग, आदर्श नगर मलोट तों राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दी अगली फरमाइश।

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तों तां बलिहारे ही जाया जा सकता है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करदे ने कि मैनू वड्डे भागा नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू तां उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तों वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुई है। करण करावन हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साईं।

0: सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनू हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने भया परगासा कोई न पहुँचण हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनों आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शदे हन। उस दे सारे पाप ते पापां दी सारी मैल दूर कर देंदे हन। अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ए सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है, जिस दे कारण गुरु संसार दा दुख दूर करदा है। गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है। गुरु असां संसारी जीवां दे जन्मां जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल कालख धो देंदा। ऐसे गुरु अंगद देव जी नूं दिन रात आत्मक अडोलता अते प्रेम विच टिक के सेवना चाहिदा है। ऐसे सतगुरु दा दर्शन कीतेयां जन्म मरण दा दुख कटिया जांदा है। भट जी इस प्रथाए बचन करदे हन, अमै दृष्ट शुभ करै हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै गुर नाम नि दरियाओ जन्म हम कालख तोवै सो कहो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। विचार अधीन शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन कि मैं अपने ऐसे गुरु जी तों कुर्बान जांदा हाँ जिस पूरे गुरु जी की कृपा नाल मेरे हिरदे रूपी घर विच आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच भी आत्मक अडोलता दा सुख मैनू प्राप्त हो गया अते परलोक विच भी ये आत्मक आनंद

मूलालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द गायन कीता सी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

0: शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम

0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। शाम 6:30 खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा किसान वाणी। आज दे इस प्रोग्राम दे विच सिलसिले होणगे किसान संदेश, किसान समाचार ते सियालू सब्जियां दी खेती बारे जानकारी देणगे डॉक्टर दिलप्रीत तलवाड़। शाम 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो प्रोग्राम प्रसारित कीता जाएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे अंग्रेजी वार्ता माई लव फॉर बर्ड्स। वार्ताकार होंगे संदीप चाहल। रात 8:10 ते विशेष प्रोग्राम पेश किया जाएगा जन सेवा तो देश सेवा। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 प्रोग्राम रूबरू तहत रंगमंच ते फिल्मां दे कलाकार जतिंदर कौर ते नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो देशभक्ति समूह गान।

0: द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। भारतीय खुराक सुरक्षा ते म्यार अथॉरिटी ने राजां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउण वाले त्योहारां दौरान मिलावटी ते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिमां शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए की लागत वाली नहरी पानी आधारित बहुपक्षी जल सप्लाई स्कीम का अमृतसर च उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने पटियाला दी अनाज मंडी विखे झोने की खरीद का लिया जायजा। सूबा

0: लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। 135 नवे डीलर रजिस्टर किए गए ते माली साल 2025-26 ते 26-27 दौरान कढे गए ड्रावां विच 3548 प्रमाणित लकी ड्रॉ जेतुआं नूं 2,30,00,000 रुपए तो वध दी इनामी रकम वंडी गई है। खजाना मंत्री ने कहा कि बिल लियाओ इनाम पाओ स्कीम पारदर्शिता लियाउण ते टैक्स प्रणाली विच खपतकारां दी शमूलियत वधाउण लई इक कारगर साधन साबित होई है। सूबे के पशु पालन डेयरी विकास और मच्छी पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा है कि सूबा सरकार ना सिर्फ विभागी कामकाज को सुचारू बनाउण सगो अपने मच्छी पालकों लिए बेहतर सेवावां ते तकनीकी सहायता प्रदान करना भी यकीनी बना रही है। कैबिनेट मंत्री ने गल अज मच्छी पालन विभाग विच नवे भर्ती हुए उम्मीदवारों नूं नियुक्ति पत्र सौंपण मौके कही। उन्होंने कहा कि इन्होंने नियुक्तियों नाल विभाग विच साल 2022 तों लैके हुण तक 55 अधिकारियों ते मुलाजमां दी भर्ती की जा चुकी है। जलंधर के वधीक डिप्टी कमिश्नर देहाती विकास दिव्या पी की प्रधानगी हेठ हुई समीक्षा मीटिंग दौरान जिले में पीएम विकास योजना सुचारू ते प्रभावशाली ढंग नाल लागू करने लई कीते जा रहे कार्यां दी प्रगति का जायजा लिया गया। मीटिंग दौरान स्कीम तहत योग घट गिणती वर्ग नाल संबंधित उम्मीदवारां दी पछाण उन्हां नूं स्कीम नाल जोड़न रजिस्ट्रेशन अते काउंसलिंग संबंधी प्रगति बारे जानकारी हासिल की गई। मीटिंग दौरान संबंधित अधिकारियों नूं सिखलाई देण वालियां ते प्रोजेक्ट लागू करन वालियां एजेंसियां नाल प्रभावशाली तालमेल स्थापित करके सिखलाई प्रोग्राम निर्धारित समय अनुसार शुरू कराउण दे निर्देश दित्ते गए। चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग ने अज 6 तों 8 अक्तूबर तक चंडीगढ़ तो इलावा पंजाब के कई जिलों ते हरियाणा कुछ जिलों में हल्की तो दरमियानी बारिश के नाल गरज और बिजली लिशकण का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पंजाब के बठिंडा विच वध तो वध तापमान 36 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। खेडां विच एशियाई खेडां च सोने दा तमगा जित्तण वाले भारतीय हॉकी टीम दे मैंबर अज सवेरे अमृतसर हवाई अड्डे ते पहुंचे जित्थे उन्हां दा शानदार स्वागत कीता गया। 2 गोल करन वाले कप्तान हरमनप्रीत ने सोने दा तमगा जित्तण ते बेहद माण ते खुशी प्रगटाई। उन्हां कहा कि कोई भी खिताब जितना अते फिर बरकरार रखना पूरी टीम दीआं सांझीआं कोशिशां ते समर्पण दा नतीजा है। उन्हां ने भारत दी औरतां दी हॉकी टीम नूं भी एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जित्तण लई वधाई दित्ती। भारत की औरतों की क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमैट्स विच कप्तानी छड़ दिती है। 37 साल खिडारन ने गुवाहाटी विच बीसीसीआई की समीक्षा मीटिंग तो बाद अपने फैसले का ऐलान किया। हरमनप्रीत वालों सारे फॉरमैट्स विच खिडारी वजो भारत की नुमाइंदगी जारी रहेगी। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते वेस्ट इंडीज़ विचकार 5 ट्वेंटी ट्वेंटी मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज लखनऊ विच खेडिया जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर च खास खबरां। भारतीय खुराक सुरक्षा ते म्यार अथॉरिटी ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउंदे त्योहारां दौरान मिलावटी अते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिम शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए की लागत वाली नहरी पानी आधारित बहुपक्षी जल सप्लाई स्कीम का अमृतसर च उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने पटियाला दी अनाज मंडी विखे झोने की खरीद का लिया जायजा। इस नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन रात 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:30 बज चुके ने। हुण पेश है खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी।
2: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
4: 60 साल की उम्र वालों नूं 3,000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
3: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तों 40 साल तक के किसान।
4: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
3: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
4: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
2: जय हिंद किसान वीरो। किसान वाणी दा ए प्रोग्राम लैके असीं हाजिर हां। असीं कोशिश करदे हां कि वन सवन्नी जानकारी तुहाडे तक पहुंचाइए ताकि जिहड़े साडे किसान वीर ने जो किसे भी किते विच अगे आउणा चाहण तां अगे आ के एंटरप्रेनर दे तौर ते उह अपने काम नूं सुचारू ढंग नाल चला सकते ने ते इसे तरह सुचारू रूप नाल काम चलाया है

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं पंजाबी गीत ज्योतिका टांगरी दी आवाज च।
1: कुड़े मैनू भी आपका गीत सुना दो।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की धाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर।

0: और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर केजी सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद
0: सुरेश जी। आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है, जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में, आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहां कर रहे हैं, निवेशक यहां आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था, कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
3: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी, मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं,

0: किया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी हैं। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है। विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उषा में हुई थी और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है, वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब है। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 तक, हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, इसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
1: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना, कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
2: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृत काल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते

0: हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्ट लक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है। तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसके पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत की एक अलग पहचान दी गई है कि भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1 लाख से ज्यादा

0: पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी एनसीआर में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि एक घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार सामान तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले, तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो दो दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन दो दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला।

0: भाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा, बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर। और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल वो उपयुक्त हो, पहले भी मैं गया हूं वहां, तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसी जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आज तक साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति बनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के Zone 4 या Zone 5 में हैं। तो Zone 4 और Zone 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके Zone 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी, और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा

0: से अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
1: निश्चित ही देखिए, जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए, सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप, उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
0: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
2: देखिए, तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया, तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस 4 अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरिएट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्विक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया,

0: भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा। आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं? और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 7:45 हो चुके ने। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।
5: दिस इज आकाशवाणी जलंधर। इन द हसल ऑफ डेली लाइफ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पॉज्ड टू लिसन टू नेचर? Join us in these moments as we are going to explore the calming, beautiful world of avian life. Sandeep Chahal is going to present a talk, My Love for Birds. Let's listen to it.
6: There are over 10,000 species of birds in the world. Researchers all over the world have estimated that 1/8 of the world's 10,000 bird species could be threatened with extinction by 2100 AD due to drastic climatic changes, environmental pollution and destruction of natural habitat. Humans have already caused the extinction of around 1,000 species of birds over the past millennium. Conservationists opine that the best way to minimize bird species extinction is to significantly expand the protected area by aggressively reducing the greenhouse gas emission and decreasing the destruction of bird habitat. Renowned ornithologist Dr. Oliver Austin, in his book Birds of the World, says that as per the fossils record, there were 11,500 bird species in the Pleistocene era, about 250,000 years ago. Unfortunately, some 100 unique bird species are known to have become extinct during the past 600 years. By 210, out of the already 1,000 bird species threatened, nearly 1/8 of the bird species will become extinct. The house sparrow, Passer domesticus, is a member of Old World sparrow family.

दिन पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए।

0: नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले रात दे 8:30 बजन वाले ने, हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत ट्रांसपोर्ट ते लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी दे गठन नूं मंजूरी दे दित्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाक्टरां नूं सेवा ते दया दी भावना नाल काम करन दा सद्दा दित्ता है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नूं हवाई फौज दा नवां मुखी नियुक्त कीता है। बेलजियम विच जन्मे विज्ञानी फ्रांसिस सोलजेन नूं भौतिक विज्ञान विच नोबल पुरस्कार देण दा ऐलान कीता गया है। भारत ते वैसट इंडीज दरमियान 5 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच लखनऊ च खेडिया जा रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत ट्रांसपोर्ट ते लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के गठन नूं मंजूरी दे दित्ती है। अज नवी दिल्ली विच केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग तो बाद मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह आवाजाई ते लॉजिस्टिक खेत्र विच खोज योजनाबंदी मुलांकण ते निगरानी नूं मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह देश विच एकीकृत ट्रांसपोर्ट ते लॉजिस्टिक्स योजनाबंदी लई चोटी दी संस्था वजों काम करेगी।
5: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7%-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए PM गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे ते दरमियाने उद्यमां लई इक्विटी निवेश लई 10,000 करोड़ रुपए की रकम नाल एक छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास फंड की स्थापना नूं भी प्रवानगी दित्ती है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह फंड छोटे ते दरमियाने आकार के उद्यमां नूं लंबे समय की हिस्सा पूंजी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि फंड का ज्यादातर हिस्सा निर्माण खेत्र में छोटे ते दरमियाने आकार के उद्यमों में निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमों के खेत्र लिए एक वड्डा हुलारा है। भारतीय उद्योग लिए अगली पीढ़ी के आगुओं को तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि फैसला छोटे ते दरमियाने उद्यमों के विस्थार, उन्नत तकनोलॉजी अपना, उत्पादन बढ़ाने ते विश्व बाजारों तक पहुंच करने लई एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि

0: मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में

0: 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की

0: टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam, results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprise

0: Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
1: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
2: 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस फोकस एम्स टू सपोर्ट एमएसएमईज इन leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
1: Manufacturing se related MSMEs, jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
0: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem.

0: जी हाँ, आकाशवाणी ने भी डोर खिंची है और साढ़े दोस्त साढ़े तक पहुंच गए ने जी। आओ फिर गल करते हैं अपने इस प्रोग्राम दे सब तो पहले लकी कॉलर दे नाल। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी,
0: हाँ जी कौन बोल रहे हो?
1: सुंदर बोल रहे जी, नालागढ़ से।
0: जी सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: मेहरबानी जी।
0: तो सुंदर जी दसो आज फिर केड़ा गीत सुनाना सुनना चाहते
1: हो? महेंद्र कपूर दा सुना दो जी, कोई भी।
0: कोई भी सुना दिए, फिर भी कोई खास कोई फिल्म?
1: चलो कोई भी चलूंगा जी।
0: अच्छा चलो ठीक है जी। ते सुंदर जी हिमाचल दा मौसम किदां दा है?
1: जी ठीक ही है।
0: हाँ मतलब हाले ठंड नहीं आई है?
1: ठंड आ गई जी,
0: थोड़ी जी आ गई है। चलो जी, थोड़ी जी ठंड इधर भी आ गई है, पंजाब दे विच भी ठंडा ठंडा माहौल हो गया, लेकिन दोपहर गर्मी हो जाती है।
1: छिटा छोड़ा हो गया जी आज।
0: जी चलो ठीक है जी। सुंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, ते थानू महेंद्र कपूर की आवाज दे विच जरूर गीत सुनावांगे। तो साढ़े व्हाट्सएप के जरिए भी साढ़े दो साइड तक पहुंच गए ने। तो सब तो पहला मैसेज साइड तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद ग्राउंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून दा। हुणे हुणे मैसेज आया है जी, गांव कुम्हार हैड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया इब्राहिम ते सद्दाम दा। ते जड़े जड़े दोस्त मैनू हुणे मैसेज करनगे ना, उन्हां नू मैं शामिल करांगी प्रोग्राम दे विच। ते आओ जे फिर महेंद्र कपूर दी आवाज दे विच सुनदे आं गीत फिल्म गोपी दा।

0: जोगी कहलाएगा।
1: जी हाँ, कलयुग तो चल ही रहा, सबनों दिख रहा है की हो रहा है, वक्त मतलब की इंसानों नू दिखा रहा है। खैर, जेकर कहिंदे ने कि तुसी चंगा सोच रखो, चंगे विचार रखो, तो हो सकता है कि आने वाला वक्त जड़ा है वह सही हो जाए, कलयुग खत्म हो जाए छेती, तो सतयुग वापस आ जाए। तो आओ जी अगले दोस्त सैट तक पहुँच चुके ने, करते उन्होंने गलबात। हैलो, हाँ जी जी नमस्कार।
2: हेलो जी।
1: हाँ जी, थोड़ी आवाज सेट तक पहुंच रही है जी।
2: आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम जी।
1: आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है मेरे पास, तो अपना नाम बता दीजिए।
2: बहुत कम आवाज आ रही है आपकी जी। मैं श्रवण कुमार रंगवा, गांव जिला फाजिलका से बोल रहा हूँ जी।
1: जी श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत, और बताइए गाना कौन सा सुनना है फटाफट।
2: गाना मैडम जी ज्योति फिल्म से सुना है, जो थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, घोड़ा ऐसा बनता है।
1: जी जरूर, हम आपको गाना सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: हाँ शुक्रिया जी, सुहाजी गुजारा साथ में जारी जी तारीखा जी।
1: जी सबकी अटेंडेंस लग गई है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: अब आवाज आ रही है आपकी।
1: अच्छा, अब आवाज आ रही है, चलिए शुक्र है जी, आपको आवाज तो आ गई। चलिए सरवन जी, आपको गाना हम जरूर सुनाएंगे, तो कल फिर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हमारे जो दोस्त है हुन जिहड़े साडनू मैसेजेस कर रहे ने, हुणे हुणे जस्ट मेरे पास मैसेज पहुंचिया है विलेज बहामाणी वाला फाजिलका तो, गुरंदिता मल्होत्रा ते शीतल मल्होत्रा दा। ते जिद्दां सरवन जी ने फरमाइश कीती सी फिल्म ज्योति दा गीत सुनना चाहुंदे ने लता मंगेशकर दी आवाज दे विच, आओ फिर सारे जणे सुनदे आं।

0: जी हाँ, लव स्टोरी होवे ते फिर सैड ना होवे, थोड़ा बहुता रोना तां हुंदा ही है। जुदाई दे विच जदों महबूब जुदा हो जाता है तां फिर दिल तां दुखदा ही है। लेकिन असीं तुहाडे तों बिल्कुल जुदा नहीं हाँ जी। एक फोन कॉल दी दूरी है, 0181 23 42 173, ते जिहनूं मिला के साडे अगले दोस्त पहुंच चुके साडे तक, कर दिया गलबात। हैलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी। मैं
0: कौन बोल रहे हो?
1: सुरेंद्र कुमार सोरी, सुल्तानगंज रोड अमृतसर तो बोल रहे हैं।
0: जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच।
1: मैडम जी, आकाशवाणी का नजारे बड़े है, सारा दिन सुनते हैं, रात नूं सवेरे जो उठे उदो लग जाता है
0: जी। तुसी देख लो कि ऐ मतलब रात दे 11 बजन वाले ने और अजे भी तुसी आकाशवाणी दा साथ दे रहे हो। आकाशवाणी ने तो सारी रात ही देना है।
1: वाह
0: जी, तुसी बहुत लकी हो इस हिसाब नाल, है तुसी बहुत दिलो प्यार कर दे हो आकाशवाणी नूं।
1: बहुत माया सी ना, 8 जून नूं सब नूं मिल के गया सी आकाशवाणी।
0: अच्छा जी, ते दसो फिर सुरेंद्र जी, गाना केड़ा सुनाइए?
1: ਅੱਜ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਮਸਤਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਸ਼ੀਲਡ ਮੇਰੇ ਹਮਰਾਹੀ।
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਜੀ,
0: ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਵਟਸਐਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਲਾਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਸ਼ੀਤਲ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੋਨੂ, ਸੁਰੇਸ਼, ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਕਜ, ਕਾਜਲ, ਸੀਮਾ, ਮਾਨਵੀ, ਤਨਵੀ, ਲਕਸ਼, ਸੋਨੀ, ਮੋਹਿਨੀ, ਰਿਤਿਕ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਤਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ।

0: जी प्रोग्राम कदों शुरू होया और कदों ख़त्म भी होने वाला हो गया पता ही नहीं लगा कि दोस्तों के नाल गल्लां बातां करदे गीत सुनदे तुहाडे मैसेजेस पढ़दे देखो अद्धा घंटा गुजर भी रहा है और आखिरी दोस्त साढ़े इस प्रोग्राम के होणगे जाणदे आ कि कौन ने। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी, गड्डी का आखिरी डब्बा तुसी दौड़ के फड़ लिया?
1: हाँ जी, हाँ, दौड़ के।
0: ते दसो हुण गाना केड़ा सुनाइए
1: जी? जी है तो ऐसी फिल्म का गीत सुनना
0: जी, ते गाने दे बोल
1: फूल गुलाब का
0: जी जरूर सुनावांगे। मैनूं लगदा राजू जी तुहानूं नींद आ रही है। मैं कह नींद आ रही थानू, थक गए? अच्छा जी, चलो चंगी गल है जी, जरूर थानू गीत सुनावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने लई।
1: धन्यवाद
0: जी। ते आखरी जड़े हुण व्हाट्सएप मैसेजेस भी साढ़े तक पहुंचे ने, इन्हां नूं भी जल्दी जल्दी शामिल करिए। निशु कंबोज, गोरा कंबोज, मनीष कंबोज, विलेज पंचन वाली ट्रिक फाजिल का तो उन्होंने मैसेज किया। और आखिरी मैसेज आया है जी रिछपाल सुथर होरां दा, माया विनय ते विपिन हिसार हरियाणा तो। ते आओ हुण आखिरी गीत राजू जी दी फरमाइश दा, बीवी हो तो ऐसी फिल्म तो फूल गुलाब का इंजॉय करो।

0: जी ऐसे ही गीत दे नाल सनाज दा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश इत्थे ही खत्म हुंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का जिन्होंने मैसेजेस किए जिन्होंने कॉल्स की। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले रात के 11 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे हिंदी समाचार ते 11:05 ते अंग्रेजी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी।

बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: शुक्रिया वीर जी। सुखबीर सिंह छाजड़ी बोलता।
0: हाँ जी सुखबीर जी, की हाल चाल ने थोड़े?
1: ठीक है सब वधिया, तुसीं दस्सो कीवें जी?
0: जी साढ़े बहुत वधिया ने। ते होर सुनाओ संगरूर च मौसम दे की हाल चाल ने इस वेले? थोड़ी आवाज कट गई विच।
1: तीन साल हो जाए।
0: किस चीज नु? तीन साल हो जाने
1: बिल्कुल।
0: ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश थे। मैं बब्बू मान साहब की आवाज गीत पे करने जा रहा हूं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक
0: यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, नसीबो चेते कर दिया। कितने जगह रहे इंद्रजीत निकल साहब की आवाज़ बैठे प्रोग्राम सुखा चल रहे जी, और दोस्त भी आ गए ने। हेलो
1: हेलो सर, श्री अकाल
0: सर, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुखा
1: जी। राजू बोल रहा जी चंडीगढ़।
0: हाँ जी राजू जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: बस ठीक ठाक है जी, साढ़े भी वधिया ने। थोड़ी कॉल आ गई, हाल चाल होर वधिया हो गए। सो की कर रहे थे इस वेले? की कह रहे थे? बिच आवाज फिर कटेगी, कोई तकनीकी खराबी करके ना आवाज कट जाती। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो? बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश में पूरी करने जा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी। सो बिल्कुल दोस्तों, साडा व्हाट्सएप नंबर 9465536077, यानी कि 9465536077। इस नंबर पर तुम मैसेज के राही फरमाइश भेज सकते हो जी। साढ़े नंबर पर मैसेज करने के लिए तुम अपना नाम, अपने शहर का नाम, तो जोड़ा भी गीत तुम सुनना चाहते हो, उस गीत कुछ बोल लिख के भेजने, तो आप उस मैसेज में भी इस प्रोग्राम से जरूर शामिल करा। सो एक बार एक नज़र व्हाट्सएप मैसेजेस से भी मार लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस जोड़े ने साढ़े तक पहुँच गए हैं जी। आओ देखते हैं सब तो पहला मैसेज कितों पहुँचा है। सो सब तो पहला मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को जलालाबाद वैसट तो, भेजन वाले सुरेश गगनेजा जी, इन्होंने नाल ने पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। तो इस एक मैसेज हो रहा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को वड़िंग खेड़ा पंजाब तो, भेजन वाले ने मिंटू टॉमस जी, इन्होंने नाल जी पिंकी, लवली ते आरती अरोड़ा। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज भी असं देख लेंगे कितों आया है जी। सो यह मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी मजनू का टीला तो, भेजा है कमल बालूजा जी ने, इन्होंने नाल ने मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक, इशिता अरोड़ा। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते अगला प्यारा जहा गीत।

0: बिल्कुल जी, हमें नजर लवाना लिंग काला टिक्का ला के रखा कर गीता जगह मैंने किरत वाला खबर के आवाज से बेचे प्रोग्राम शारे जी सो गाते अगले दोस्तों के आगे ने। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। कौन गल कर रहे हो ते कितों गल कर रहे हो? वैसे मैं पहचान लिया पर आपा दोस्तों नूं दसना। होर सुनाओ बिट्टू जी, की हाल चाल ने तुहाडे? बस ठीक ठाक है सर, वधिया जी साडा वी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। सो केड़ा गीत सुना गया अज? हेलो, हाँ जी हाँ जी, कराओ जी। हेलो
2: हेलो अंकल, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
2: माय नेम इज धनवी।
0: माय नेम इज
2: धनवी।
0: धनवी
3: धनवी।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: UKGB।
0: अच्छा UKGB। सो क्या पढ़ते हो वहाँ पे क्लास में? क्या क्या पढ़ते हो?
3: क्या क्या पढ़ते हो?
2: मैथ, इंग्लिश।
0: अच्छा, मैथ, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी और जीके भी है?
2: यस।
0: EVS भी होगी?
2: यस।
0: अच्छा चलो, बहुत अच्छा है जी, पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहा करो। हाँ जी हाँ जी, सुनाओ जी सुनाओ। वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड गुड गुड गुड। सो चलो जी, थैंक यू जी। हूँ मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करन जा रहा हूँ, गीत प्ले कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, थोड़ी फरमाइश मैं पूरी करन जा रहा हूँ। ओके जी ओके।

0: बिल्कुल जी, वादियाँ तो मुकरी, इरादियाँ तो मुकरी, गीत जगह रहे हैं नक्षत्र के साफ दिया वास्ते बीते प्रोग्राम चल रहे थे। सो गाते अगले दोस्त भी आ गए नहीं। हेलो
1: जी,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात। हाँ जी तस्सीम जी, की हाल चाल है थोड़े? चलो वधिया होने चाहिए ने। तो की कर रहे थे इस वेले? हेलो, अच्छा प्रोग्राम सुन रहे थे। कॉल किनिक देर तो ट्राई कर रहे थे? 11:10 दी लगे हुए सी, लगभग 12 बजे जाके बारी आई। सो केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो अज? बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, हम परों पार हुई है तेरे विचकार हुई है गीत जगह रे सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ तभी तो प्रोग्राम चल रहा जी। सौगात नंबर है साढ़ा 0182-4143-171 यानी कि 0182-3421-71। सो यही नंबर डायल करके दोस्त भी आ गए जी। हेलो,
1: हाँ जी,
0: नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: मिठी मिठी और प्यारी प्यारी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है जी?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: झोना वेच रहे हो गया? हो गई है, बोली लग गई
1: झोना वेचना दे औखा जी।
0: अच्छा, काम तो वैसे सारे ही औखे है जी इस वेले।
1: ये तो अपना हौसला होता है।
0: ये तो है जी, ये तो है, बिल्कुल सही गल है जी।
1: मैं जेडे मर्जी बोले बोले बेले बैठे भी रो जांदे
0: है। वही मैं कह रहा जी, काम तो सारे ही औखे है।
1: असी काम करके भी खुश है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल, काम करके खुशी होनी चाहिए जी। जेडी खुशी मिलती है और सुकून मिलता ना वो काम तो बाद, वो वाकई मेहनत का जरा सुकून है वह वखरा ही मजा है।
1: उसका फल ले जाइए।
0: बिल्कुल
1: हर
0: चीज का अपना अपना एक मजा है जी।
1: so, ये श्रोता भी बहुत बड़ी चीज है।
0: हाँ, वाकई वाकई बिल्कुल जी। आपस में आपस से गल करनी
1: इनका मेल बहुत तगड़ा है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: परमात्मा तुम्हारे आकाशवाणी जल्द को चढ़ती कला रखे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तुहाडे वर्गे दोस्तों दे नाल ही है जी साडा, तुहाडियां दुआवां है ते साडा काम चली जांदा। सो केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो अज? बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।

कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ निर्णय का चाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। प्रभु नाल प्री

मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सबते ऊंचा। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

बंधन बंद पुआए सोए पै कितन चे सबको नच नच हसै चले सिरोए उड़ ना जाही सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का जाओ नानक जिन मन

0: अंडर जे रे पूजा खाणी सित जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता की चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस इस दीवान अभग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पन्ना परवान लख तप ऊपर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छूटे प्राण

शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुरु रामदास सार।

0: अनपो उन्मान। अकल लिब लागी पारस पेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे। मिटिया जन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे। अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो, दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने, सतगुरु के प्रसाद सहज सेती रंग माने। नानक प्रसाद अंग सुमत गुर अमर अमर वरताए ओ, गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पाए ओ।
1: संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत शांति उपजै दुरत दुरंतर नासै। सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै, संयम सत संतोख सील सनाहो मफुटै। सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो, जग जस तूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरे तैं अपै अमर पद पायो। जग जितों सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नवनित नाम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी, सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी। आदले भगत जित लग तरे।

0: Pagat parva parit pubilina hutta satgur shabd yatha ametara ras gutta mat mata santokh pita sar sahas mayo ayunni sambhavyo jagat gur bachan tarayo abgat agochar par par man gur shabd vasayo guru ram das kal uchare tain jagat udaran payo abgat agochar par par man gur shabd vasayo guru ram das kal uchare tain jagat udaran payo
1: जगत उदारण नव निदान भगते पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर पर

जिनको गुरसो परसन शब्द लग भव जल तार परचो परमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल।

0: राखूं सरना
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सो भाई दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामनी नूर अर सोह कुर सोह चटिया